कुंचर स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जबुद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बद

केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अब रच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संग्रो दुष्ट जेती उठ बतुत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख।

माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

0: और समय ने एक सवाल भी है प्यार पर वो थोड़ी देर के बाद सबसे पहले प्यार अली भाटिया ने क्या कहा है You only know where the edge is once you go over it जब कैसे आपको पता चलेगा कि आप गिर नहीं जाएंगे अगर ये एज किनारे पर पहुंच गए कहते जाकर देखें गिरेंगे तो पता चल जाएगा ओके
1: प्रवीण जी दे दे प्यार ये गाना फिल्म सराबी का है जिसको आशा भोसले ने गाया है जिसको अंजान ने लिखा है और जिसकी धुन बेपी लाहिरी ने बनाई है गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: अच्छा बप्पी लहरी की धुन आई कैन इमेजिन कि वो उन्होंने ही बनाई होगी अमेजिंग और साथ पहला मैं आई मीन पहला मैसेज तो प्यार अली का था अब चलते हैं रूपल के पास जागो मोहन प्यारे ओके वो किसी दिन जरूर जागे जगाएंगे मोहन प्यारे को लेकिन आज प्यार की बात हो रही है ना तो इसलिए वो मैं अपनी जो है ना लिस्ट को मतलब के वैसे ही रखना चाहती हूँ
2: It's a hard truth. One day we'll have to leave without the people we love most. A parent, a sibling, or they without us. So hold them close. Appreciate them now because none of us are promised forever. So friends, remember, we are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose is to observe, to learn, to grow, to love, and then we return home. Thank you, shukriya, subha ka pyara salam, Salma Ahmed, Kisumu.
0: Oh, Bharat Gangaram in London. Jud chuke hain bemisal andaaz ke saath, lajawab program. Amir Ali Rana, kehte hain ki dil se dil kabhi juda nahi hote. कहते यूं हम किसी पे फिदा नहीं होते प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होती बहुत अच्छे और जुलाई 29th टाइगर कंजर्वेशन वुमेन्स बाजार नहीं मैं 23rd ऑफ जुलाई की बात करूंगी आज अमीर अली राना बट थैंक यू और लखबीर ने क्या कहा है माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उनकी ताकत उनके हाथ पैरों में नहीं होती बल्कि औलाद के लहजे और रवैयों में होती है वाह जैसा बच्चे का रवैया होगा औलाद का कहते हैं वही सामिन खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके बच्चों का रवैया और उनका लहजा बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ सही हो लखबीर वंडरफुल और एमएल विश्वकर्मा Success is not just a measure how big you can dream. It's a measure of how much you can do. Okay? आपने रिंग की बात की है अच्छा वो रिंग की बात एमएल विश्वकर्मा बाद में करेंगे पहले हम सवाल भी करेंगे लेकिन पहले प्यार की बात करनी है

इतना ध्यान रहे कि तुमको डैश डैश की बद्दुआ ना लगे। तो परवीन भाई थैंक यू सो मच इंडीड। और शहाब आपने जो आंसर भेजा है, आपने कहा है ध्यान रहे कि तुमको टूटे दिल की, या वेरी गुड, आपने कहा है दुखी दिल की बद्दुआ या टूटे दिल की बद्दुआ। शहाब वेरी गुड। कृष्ण सरोय आपने कहा है ध्यान रहे कि धोखा दही की बद्दुआ ना लगे। ये हो नहीं सकता, धोखा दही की बद्दुआ डजंट मेक सेंस। सो आप जिस तरह से इसको बदल दें। रसीला आप का नहीं आंसर नहीं आया। रमेश हरिया क्या कहते हैं, मां बाप की बद्दुआ ना लगे। अच्छा, पर ये प्यार की बात है मर्द और औरत के दरमियान। तो कहते हैं हजार बार इश्क करो लेकिन ध्यान ये रहे कि तुमको डैश डैश की बद्दुआ ना लगे। तो मां बाप का नहीं होता इसके अंदर। और यासर, हजार इश्क करो लेकिन इतना ध्यान रहे कि हालांकि मैंने बदलने की भी कोशिश की लेकिन यासर को मिल गया है क्योंकि वो अच्छे अच्छी तरह से अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और माँ बाप की दुआ नहीं, नहीं माँ बाप की बद्दुआ नहीं। सलमा बिल्कुल करेक्ट, सलमा ने भी ढूंढा है। आई कैन सी यासर और सलमा फर्स्ट टू कॉलर्स। और ऑफ कोर्स अनदर वन ममता। अच्छा, मतलब ये है कि आपको मिल गया है कि कहाँ से मैंने ये लिया है।

0: ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। और समझ हमारी एक लिसनर ने भी प्यार किया था सिर्फ एक बार जिंदगी में। हेलो
1: हेलो
0: पारो चोड़ा
1: जी।

और रसीला ने पिछले घंटे में पूछा था, मुझे लगता है पहले घंटे में, कि मेरा सवाल आज पूछिएगा, व्हाट डू पीपल डू 144 टाइम्स अ डे, रोजाना क्या करते हैं लोग 144 बार, हर कोई ये करता है 144 टाइम्स। ये रसीला का सवाल है, जवाब दीजिएगा 0701 106 106। 144 टाइम्स डेली हम क्या करते हैं ये बता दीजिएगा। और धीरू भाई लखानी, मेहरबानी आपने मैसेज जो भेजने की कोशिश की है।

0: और सबसे पहले सही जवाब देने वाली जबीन हिरानी है, उनके बाद पूरी लड़ी लग गई है।
1: हेलो प्रीत जी, आज तुसी प्यार ते सारे गाने ला रहे हो, प्यार हो बहुत गुड, प्यार वर्ड बहुत अच्छा वा, सारे नाल बंदे नू प्यार करना चाहिए वा, किसे दुश्मन के नाल भी बंदे नू प्यार करना चाहिए वा, पर दुनिया पता नहीं समझेगी कदों। थैंक यू जी।
0: थैंक यू जतिंदर। और अब जबीन हिरानी के बाद जवाब किसका आया है? अमीर अली राना, आई एम सो ग्लैड। या आपने आंसर भी करेक्ट दे दिया है, आपने कहा है कि प्यार पर तो ना आप अगर कल भी रखें जारी, कल कुछ और होगा, कल कुछ नया करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने सही जवाब दिया है। और सलमा अहमद ने भी सही कहा है, मुझे लगता है यही जवाब है, हालांकि आपने नहीं दिया, लेकिन आपने कहा है हितेन ने फ्रॉम यूके, हितेन ने वो भी दी थी ना पूरी इन्फॉर्मेशन ग्लासगो स्कॉटलैंड जाने की, 124 इंडियन एथलीट्स की हितेन ने ही दी थी, अब भी उन्होंने ये आंसर करेक्ट दिया है। थैंक यू सोनल मोदा, आपने भी मतलब कि सभी ने पढ़ ली है ये। दीपक वडगामा, किसी का रॉन्ग है ही नहीं। टीना, आप कहती हैं कि माय डॉटर रिप्रेजेंटेड केन्या फॉर स्विमिंग एट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन पुणे इन 2008। रियली टीना, ये तो बड़े गर्व की बात है आपके लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है, तो आपकी बेटी अब क्या करती हैं? 2008 की आपने खबर दी है टीना। ओके, और मंजुला विश्वकर्मा ने सही जवाब, शब्बीर अहमद। व्हाट अ चॉइस ऑफ सॉन्ग्स। यस शब्बीर साहब, आप अभी भी बहुत पुराने आ रहे हैं। ओके खतीजा, करेक्ट आंसर। आशा भिमानी, बिल्कुल सही, मतलब कि हमें कोशिश अब नहीं करनी की ज़रूरत के, सही जवाब सबका सही है। और आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू यू, हम तेरे प्यार में। ओ माई गॉड, ये किसने कहा है? ये कहा है नलिनी आर शाह, हाउ नाइस। और वो जो मेरा फेवरेट था वो तो मैंने खुद ही अपने आप को डेडिकेट कर लिया, टूटेगी ना प्यार की डोर। अब ये 144 टाइम्स का थोड़ी देर में मैं आपको आंसर दे देती हूँ।

और टीना को अभी अभी मैंने पूछा, वो कहती हैं कि मेरी बेटी ने 2008 में रिप्रेजेंटेड केन्या फॉर द स्विमिंग कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन पुणे इन 2008. तो मैंने कहा कि वो कहाँ हैं आजकल. टीना ने जवाब दिया कि रचिता शाह इज़ अ डेकोरेटेड केनियन स्विमर. समय वो तैराक हैं केन्या की और हमें पता ही नहीं कि वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं केन्या एट द 13th फीना वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हेल्ड इन रोम इटली इन जुलाई एंड अगस्त 2009. वाह क्या बात है फॉर अ मदर. कमाल है रचिता शाह की मॉम टीना को. आई कंग्रेचुलेट यू. शी इज़ नाउ मैरिड एंड शी इज़ अ मॉम. शी लिव्स इन बर्मिंगम यूके. वाह बहुत अच्छा फॉर शेयरिंग दिस विद अस. आपको समझ अचीवमेंट्स शेयर करनी चाहिए. एंड अभी तुम तो प्यार हो शबीर अहमद आपको पसंद आए. बहुत ही ब्यूटिफुली संग भी है समिन. आप देखें कि 144 टाइम्स हम अपना मोबाइल देखते हैं. ये काम हमें मिल गया है अब करने को. हाँ 144 बार दिन में हम अपना फ़ोन देखते हैं चेक करते हैं. मुझे तो लगता है कुछ लोग इससे भी ज़्यादा करते होंगे बट ऑन एवरेज

लेकिन ये साहब चाहते थे कि मुकेश का गाना गा लें, मैंने इजाजत दे दी, बुरा नहीं था, काटने का जी नहीं चाहा। खैर समिन, इसी के साथ आगे जो है, पहले तो अस्सलामुअलैकुम परवीन जी, वाज अ रियली बट टुडे आई हैव एंजॉयड द शो थरली। Rashida Ibrahim, extremely good selection of songs today. I heard a very big salute to you. I would like to give you a very big, bahut shukriya. Salute mujhe mil gaya hai, Rashida Ibrahim. Bahut achhi baat hai Rashida, ki aap sunti hain, enjoy karti hain. Aur aage bhi ek pyara sa, meetha sa gana hai, pyar ke bare mein.

और सामने इतने प्यारे प्यारे नगमे और क्या कमाल के हमारे संगीतकार, और एक संगीतकार हैं सी रामचंद्र. व्हाट अ सुपर्ब चॉइस ऑफ सॉन्ग्स. जॉइंड लेट सो अनफॉर्चुनेटली मिस्ड द अर्ली वन. थैंक यू सो मच. ये किसने कहा है? रीटा. रीटा यू कैन एंजॉय थ्री मोर सॉन्ग्स. पहले तो रीटा आप सुनेंगे सी रामचंद्र को. समझ, ये संगीतकार थे राजेंद्र कृष्ण. इनके साथ कई फिल्मों में इन्होंने काम किया, और ऑफ कोर्स फिल्म खजाना है.

0: वेरी ट्रू. मतलब कल ही मैं बात कर रही थी इस बारे में कि सड़ा के मुंह घूमते हैं कई लोग, लाइक पता नहीं कौन सी दुनिया उजड़ गई है. लाइक आई अंडरस्टैंड सम डेज आर नॉट लाइक, और दिस जस्ट दे हैड, देयर इज अ कोट दैट सेज नॉट एवरी डे इज अ संडे, बट कम ऑन, आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर रीजंस टू स्माइल, देयर आर मेनी अदर रीजंस टू बी फील गुड. समटाइम्स थिंग्स आर नॉट ईजी टू अचीव प्रोबेबली फॉर दैट डे, बट मे बी यू कैन ट्राई अगेन टुमारो एंड यू माइट जस्ट गेट इट राइट. इट कुड बी एनीथिंग दैट यू आर विशिंग फॉर. तो थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी बातें एंड सम ग्रेट म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेट्रो टू राइट नाउ विद निलूफर ऑन ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.
1: ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स.
2: इट्स 2:16.
1: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Our client in the FMCG industry is seeking to recruit a head of exports, bachelor's degree in international trade, agribusiness, supply chain, business management or a related field, certification in export management or international trade law, and a minimum of 10 years of progressive experience in export operations with at least 5 years in a senior leadership role is required. An MBA in any field is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Optimize Outsourcing Limited is recruiting a highly organized and detail-driven operations and inventory administrator, undergraduate or diploma in a relevant field, and a high level of accuracy in data entry, stock, and PO processing experience required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. MyJobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
5: Kenya's premier Asian mix continues.

It's Springview on East FM, Kenya's premier Asian mix. As we know, Dil To Pagal Hai is one of those Bollywood iconic films which never gets old. Like just, I think, a month ago, yeah, I watched the film all over again. And I think I was watching so many of these movies because... नई मूवीज़ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा था मैंने कहा चलो थोड़ी पुरानी फिल्में देखते हैं और इन्जॉय करते हैं सो जब भी मैं दिल तो पागल है चेन्नई एक्सप्रेस यू नो दैट रेंज दिल से विच अदर मूवी मोहब्बतें सलमान खान फिल्म्स आई वॉच्ड अगेन एंड आई फेल्ट सो गुड वेलकम बैक टू दिल तो पागल है एज वी नो दिस इज़ वन यश चोपड़ा फिल्म विच जस्ट नेवर गेट्स ओल्ड इन फैक्ट इसका वर्किंग टाइटल पहले कुछ और था द फिल्म टाइटल वॉज मैंने तो मोहब्बत कर ली देन दे चेंज्ड इट टू दिल तो पागल है आई थिंक दिल तो पागल है वर्क्ड परफेक्टली वेल एंड अक्षय कुमार केम ऑन बोर्ड टू प्ले अजय द रोल रिपोर्टेडली विच वॉज ऑफर्ड टू आमिर खान सैफ अली खान सलमान खान बट दे ऑल डिन वॉन्टेड टू प्ले सेकेंड लीड नेक्स्ट टू शाहरुख खान एंड सेम थिंग हैपेंड विद एक्ट्रेसेस बिफोर करिश्मा कपूर एक्चुअली वन एन अवार्ड फॉर दैट रोल दिस रोल वॉज ऑफर्ड टू रवीना टंडन जूही चावला काजोल मनीषा कोयराला उर्मिला मातोंडकर एंड शिल्पा शेट्टी एज वेल एंड दे ऑल रिजेक्ट से नहीं माधुरी के सामने हमारा क्या बट लुक करिश्मा कपूर यू नो हम कंसेरियंस ऐसे होते हैं चैलेंजेस वी लव या जस्ट टेलिंग यू दैट करिश्मा कपूर का बर्थडे अभी भी गया और मेरा आने वाला है ठीक है ना ओके एम पैसा चलेगा यू कैन सेंड मी एम पैसा फॉर माई बर्थडे नो प्रॉब्लम थैंक यू

0: Kenya's premier Asian mix.
1: Asian mix.
2: 106 Music Marathon, only on East FM.
3: East FM.
4: तेरी मम्मी की जय